0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेंट्स

0: Vatsalya Pokhara Clinic, New Road, Pokhara. Fertility Hotline 01-597-0611.
1: ओहो नासर बे कत्ती छाब डिजाइन बे मारे गाना खिनानी खानी तोला
2: खाने बीवा नासर बे रूपा कोट ज्योति सुनचाती दुकान महेंद्र पुलारी तोला
1: ए नई छाबा मारे दुकान पो मोना नई प्रेसोलाई नी चारबा चूरा रंया औंठी हमेला झोका टॉस टिकरी हार तन चने तो होनी जग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुअल तु बिसानारी बेल्ले छाबा पोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मिशा वा चुवल तु बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै याव यार मोहै
1: जग मात्र आंगी रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रवा ता क्रीवा ज्याला जाति क्रीवा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय मिल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र
2: किमो बिशा वा चुवल तुई बिशा रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई

0: लगाने
1: स्वाद जस्ते संबंध गास्त ज्ञान मसाला
0: ज्ञान मसाला
2: 93.4
3: ए सोधा स्वच्छ र सफा धुलाई ए सोधा नै हो मेरो रोजाई।

0: अनुरोध गर्दछौ।
1: बिरामी जाँच यही भदौ 19 गते शुक्रबार पूर्वान्न 11 बजेदेखि 20 गते शनिबार मध्याह 12 बजेसम्म।
0: सम्पर्क सुन्दर पोखरा फार्मेसी।

0: पति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा
1: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना गए अब रसायन केडियम राख्ने समय 93.4